रंग रोवे सहज रंग रोवे प्रभु पान का रंग रोवे प्रभु पान का रंग रोवे

0: नाते पूछता कि शोभा बनी सुख नानक ओंकार सतगुरु प्रसाद ओंकार सतगुरु प्रसाद पात सैदार नस्त कमाल जन चामन सलो जी चामन चामन सलो जी जी चामन सलो जी जी सतार चामन सलो जी जी सतार में जाल तमा जात बंत नान दाल तमा जात जाग सुते धान ताप अमर जाग जाग जाग ताप सात
1: नानका

अवश्य हमारे दिल पावन पवित्र स्थान तक सचमुच बैठ के आगे कीर्तन करदे बिन प्रकार बोल बख्शे महाराज संतान करूँ प्यारे बोलूँ।

द्वितीया माल कौ सक अलाप है संग रागनी पांचो थाप है गोण करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुती उचारी तनासरी ए पांचो गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उभारा खौ खड़ औ पहुरा नत गाए अष्ट माल कौशक संग लाए पुने आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लय पहर जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरसवान औ आहे बिनोदा गावे हैं सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी उन आई दीपक की बारी कशेली पड़ मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसम चंपक के नामा गौरा औ कांदरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक

संतन श्री गुरु गोविंद संग दियो महाराज महाराज धन धन बाणी शब्द गुरु प्रत्यक्ष गुरु पूरा गुरु समर्थ गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब

जंत्र हरि मंत्र हरि सो तेज हरि तंत्र हरि अजात हरि अपात हरि मित्र हरि मात हरि रोग हरि शोक हरि भरम हरि।

पतस्तु ही छतस्तु ही ऊर्धस्तु ही भजस्तु वंग भजस्तु वंग रटस्तु वंग ठटस्तु वंग जिमी तुहि जमा तुहि मकी तुहि मका तुहि अभू तुहि अभ तुहि अछू तुहि अछ।

जैसे एक आग ते करूंगा गोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनुगा फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केत कछ मछ केते उनको करत बच केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केत नब बीच अच पछ को करेंगे फच।

तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताहि तयो बज सब ताहि मैं समाहेंगे। कुकत फिर रत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है कित गंग वासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी फरमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चुआ चार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

सतरंग नवामंग लेखंग वेखंग जोनि स्वरूपं सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध रूपं नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहा बासता को फिर कौन भेखं कहा नामता को कहा कह कहा वे कहा कह बखानो कह मै न वै न रोगं न सोगं न मोहं न मातं न कर्मं न परमं न जन्मं न जातंग द्वैखंग वेखंग जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अचेतंग छयाद अद्वय विनाशी न जातंग न पातंग न रूपं न रंगे नमो आद भंग।

नाने हंग नगे हंग सने हंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न वित्रे सभूते भविखे भवाने या चित्रे नारायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अभेखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न केहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो निया चय आदया चोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न सुगंग भय निर्भिखादंग अछेदंग वेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न केहंग न भरमंग न भायंग न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भरमं सदेवं सदा सिद्ध वृद्धं स्वरूपे नमो एक।

अनुभव प्रकाश या छह स्वरूप अद्वै नाश अंतुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंश जगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं बर्ग व्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत।

तीरथ तीरथ भरम सोभरम तय अग्न होत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तदप्तास पायतन पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र दुचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जोग रीत कहूं बिरद चार कहूं करत जछ गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ कर्म कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदप्तास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदपदिष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन भो कुटो सर्व

श्रेय सिंधरो बिंद नगिंद नगं से जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव वेव नरंग नर पान रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज से तज उद भुजंग किए देव देव श्राद्ध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जातन पातन ज्योत जुतंग जे तातन मातन भ्रात सुतंग जेह रोग न शोक न भोग बुआंग जेह जंप है किन्नर जछ जुआंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जाछ भुजंग दिए गज बाजर थादक पाद गणंग भूत भविख भवान तुआंग जेह अंडज से तज जे रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली वो मेरा आकाश निवासी तंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पौन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाए दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूता भूत छूत मतंगन गाद ब्याद अनाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत भेद पुराण सभा जय भेद कतेव अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जपै सुत सिंध दो मुख ताप तपै कई कल्पन लो तब ताप करै नहि नैक कृपा निध पान परै जय फोकड़ धर्म सबै तज है एक चित्त कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहि कोट प्रति इम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस

अनाथ है, समस्त सिद्ध वृद्धता सदैव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानी है सदैव सिद्ध शुद्धता, प्रताप पत्र जानी है, न राग रंग रूप है, न रोग राग रेख है, अदोग दाग तक है, अभूत ब्रह्म फेक है, न तात मात जात है, न पाद चिहन वरण है, अदेग से गेक है सदैव विश्वभरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्वभरण है, जिमी जमान के विके सदैव करम वरम है, अद्वेक है अभेक है, अलेख नाथ जानी है सदैव सर्वठौर में विशेख आन मानी है, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराने औ कुरान नेत नेत कह बतावई, न करम में न धर्म में न भ्रम में बताइए, अगंज आदि देव है कहो सो कैस पाइये, जिमी जमान के विके समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाट है, न घाट बाट होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानिए।

अंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संक है, न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साह को कुमार है, न ने है, न गे है, न दे को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को सरू है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेक है, न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाद है, न सीत है, न सोच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभ्रम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बलीय रूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है, अनंत है, अनंत तेज जानी है, भूम भिज है, सदा छिज तेज मानी है, न आद है, न व्याद है, अकाद रूप लेखी है, दोख है, अदाग है, अच्छे प्रताप पेखी है, न कर्म है, न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोहकार है, न आद है, न गाद है, न व्याद को विचार है, न रंग राग रूप है, न रूप रेखरार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है, गजाधपी, न राधपी, करंत सेव है, सदा सिद्धस्पति, तपस्पति, वनस्पति, जपस्सदा, अगस्त आद जे बटे तपस्तपे विषेखी है, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखी है, अगाध आद जीव की अनाद बात मानी है, न जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानी है, सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह, तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोद है, त्व प्रसाद रूवामल छंद, रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन, आदनाद अगाध पुरख सो धर्म करम प्रवीण, जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरख अपार, हस्त कीट बिखे बस सब ठौर में निर्धार, जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र, सर्व ठौर बिखे रम्यो जय चक्र चिहन न चित्र, आद देव उदार मूर्त अगाध नाथ अनंत, आद अंत न जानिय अभिखाद देव दुरंत, देव भेव न जान ही जय मरम वेद कतेब, सनक औसन के सनंदन पाव ही नह सेब, जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर का पार, नेत नेत पुकार ही शिव सकरौ मुख चार, सर्व सपद पतार के तर जप ही जय जाप, आद देव अगाद तेज अनाद मूर्त अताप, जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहे ओ विराज धीराज राज प्रवीण, जाछ गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे, वैष्णंके विखे विराजे शूद्र भी वह नाहे, गूढ़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप, रात दिवस न मध्य उर्द न भूमा का सनूप, जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन, तीर्थ जात्रण देव पूजा गोर के न अधीन, सर्व सपद पतार के दर जानिए जय ज्योत, शेष नाम सहंस फन नह नेत पूरण होत, सोध सोध हटे सब सुर विरोध दानव सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब, पढ़त पढ़त सके महागप गढ़त गाढ़ अनंत, हार हार कहो सब मिल नाम नाम दुरंत, वेद भेद न पायो लखियो न सेवक तेब, देव दानो मूड मानो जस न जाने जेब, भूत बाप भवान भूपत आदनाथ अनाथ, अगन बाजले थले मह सर्व ठौर निवास, देह गेह न ने सने अभेह नाथ अजीत, सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत, सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयाल द्वेख, चक्र चिहन न बरन जाको जात पात न भेख, रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग, सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनभंग, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल, दीन बंध दयाल स्वामी आद देव पाल, दीन बंध प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार, बरन चिहन न चक्र जाको चक्र चिहन आकार, जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न बरन, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन, दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरक प्रमाथ, दुष्ट हरता श्रेष्ठ कर्ता जगत मय जय गाथ,
भूत भव भवेख भवान प्रमाण देवा गंज आद अंत नाद श्रीपद परम पुरख अभंज धर्म के अन करम जेत कीन तौन पसार देव देव कंदरव किन्नर मछ कछ अपार भूमका जले जले महमानिये जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद अघाओ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल सर्व कर्ता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व करम प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हरता बेसुभरता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूमका जले थले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोटेन्द्र उपेन्द्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र मुख चार कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुख चार आद अंत न मध्य जाको भूत भव भवान सत द्वापर तृतीय कल जुग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदिक भेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सभय कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके

कहां रंग राजा कवन हरक सोग है कवन कुरु की रागी कवन कहो तत्मोह तवन दोहरा कवन ऋष्ट को पुष्ट है कहां सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहां कर्म को कर्म है कहां भ्रम को नाश कहां चितन की चेष्टा कहां चेत प्रकाश दोहरा कहां नेम संयम कहां कहां ज्ञान ज्ञान को रोगी सोगी कवन कहां धर्म की हान दोहरा को सूरा सुंदर

असुर मारण पति दो धारण नरक निवारण गूढ गते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन रमक बर्दन छत्र छिते आसुरी बेहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते जंडासुर चंडन मुंड बेहंडन धूम्र विदुंसन महक मथे दान प्रहारण नरक निवारण नदम उदारण उर्दे जय जय हो सीमा खासुर मर्दन रमक बर्दन आद वृते डावरूढ़ वंगे बर्ब वंगे भुजा फुरंगे तेज वरंग लंगुड़िया फांदे आयुध बांधे विवर्धन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखण दमके अस्सी झमके फुंक फनंग जय जय हो सीमा खासुर मर्दन रम्भक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंडे अखंडन खून गिते दामनी दमंकण धुजा फरंकण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवर खण दोष प्रकार खण पुष्ट प्रहार खण दुष्ट मथे जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भूमा कासर उर्दे दामनी प्रहासन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचंजुत प्रमाजन हृदय नाचंदन अमृते श्रोणंत अचिंती नल बिवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सीमा खासुर मर्दन पाप विनाशन धरम करे अख ओख निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण सस प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अर्ष प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलंग जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भूम आकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़वी प्रदंते जोग जयंते मनज मतंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्टभुजे जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भरम विनाशन धरम दुजे घुंगुरु कमंकण

बंधन दोष निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अद मुधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय हो सी सब ठौर निवासन बाए पताल आकाशन ले संकटी निवारण नदम उदाहरण तेज प्रकरखण तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाथ अकाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी सहस्र प्रकरखण आद अनिल अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी धुंद तुरंगण तिछ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन प्रदन विमोचन सोज विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे शुभ्र सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला ब्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सी मखा सुर मर्दन आद अनाद अगा दुर्धंग घंट का विराजे रुण झुन बाजे भ्रम बाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल बिग भाजे सुकूप राजे मध उरंग दुर्जन दल दजे मन धन रिजे सब न भजे रोहरणंग जय जय हो सी मखा सुर मर्दन चंड चक्र दन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर वृत्ते धूमराज विदन संप्रलय प्रजुन संजय।

कारण करीले गर्भ गहिले ज्योत जतीले धुंध मते अष्टायध चमकण सहस्र जमकण दामिन दमकण आद वृते डुकडुकी दमंके भागव बंके भुजा फरंके शुद्ध गते जय जय हो सीमा का सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान बिहंडन दुष्प्रचंडन।

जथामत त्रैण तंत करता करी मकादर कृपाल अद वह अभूत अन भय दयाल दाता दुरंत दुख दुख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत कई ऊच नीच की नो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साज सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए अंछिज तेज अन भय प्रकाश दाता दुरंत अद वह ना सब रोग शोक दे रहत रूप अन भय काल।

नहीं एक धर्म जे शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप चल पार जानी न जाए जह रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भेग कहे नाम तास है कवन जात जे शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जे चक्र चेहन नहीं रंग रूप जे खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग बिरहा से

इंद्र जय पान हार कई गोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्याद ब्रह्मा आनंद जय नेत नेत निस दिन उचरंत त्वा प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संतु बारग नीमन गारे पछ पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सब को प्रतपार पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत न हारे दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के पल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमा पद भेद कते भेद उचारे रोज ही राज विलोकत राज करो खरोहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे अहमेव न भेव लख्यो भ्रमश्यो भरमाए वेद पुराण कदेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत श्यो किंसरी पदमा पत पाए आद अनंत अगात तवेख सो भूत भवेख भवान अभय अंत बिहीन अनाथम अबदाग दुख छिद्र छय लोकन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रवह दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पदमा पत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त के अच्छा है जान को देत जान को देत जमीन को देत जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरे सुत सुंदर श्री पदमा पतल है रोगंते अर सोगंते जल जोगंते बहुत बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत तन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दय कर बाप सम्भोहन बेटन पावे और की बात कहाँ कह तू सो सो बेट ही के बट बीच बचावे जाछ भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर जावे भूम आकाश पताल रसातल जाछ भुजंग सब सिर न्यावे वेद पुराण कतेब पुराण अभेद ऋद मन सब का पर मोरे वेद में बाहर सके दो वेद में के दिन न पछे सब को हर वेद को राग न छेद न रे आंग न साग न साग न सब न देह रे जान न कंद सब कर रे कर रे जब नहीं बोलता रे जीर गुड किए से नाम दिए बोली न गुड की हासे दे मेरे होकर वेद संबोधन करे धरे न मिले हर पे रे आसन कोट करे स्थान धरे बोने अस करे पुकारे दीन दयाल न कसर बिन बिन अरिंद को अंत के धाम से बिन रे अत्र के चलैया चित्त छत्र के धरैया छत्र के धरैया चलैया महा सिधरणि के साल है जानि के देवैया मन हम सन के बनैया के सन के देवैया मन कटैया जम जाल है के देवैया कटैया के जतैया विरुद्ध के मिटैया महा बुज के देवैया मन हम मन के मान है ज्ञानिया के का महा गुण है के देव काल सन के काल तथा काल सन के काल है पूर्व में काल बाबा ने बोला है माले दर में गोल कर दे दे को ना वे दे ना को ने जो के जो को सदा बोल दे सदा ना कर दे बंदे यार पे यार दिया भूखा गुण गावे जिन मचीन के से भूखा गुण गावे जिन आए दुख दे से के दर तय मैं जिन आए हो खयो दिन पूरण पड़ जिन पायो सर गुण नाम बल बल बल सो पायो तर है नाम पर देव देव दान को सुरे सदान वान को मैं सरंग दान को सब बेस कर ही अंत है अंत में रख की मेरा रूप मैं प्रवीण न बोल कर रूप ने तीर साधा दी मैं नहीं अपार है तीर साधा दी मैं अपार दे पुंज मैं अपार की विद करे वे जान है अपार गलियत है हाथी की पुकार पर दिया हो जाता है चिट्ठी की चंगार पर महादीन कितने व्यास से
कबीर के मांगो मेरे को लीले कसे सिंगार हिया तुम हाले तो जाने बेचार पितरा नी रंदो को पाप पार दाई रे पार नि रंदो पाप लही अब है पाप नि पूर्ण अवतार नि आधार है ना पाप पार बताई रे ने पार पे पार के पार पाली है ना पार पे ना सि पर पूर्ण नि का सि मा रूप हु कर सि रे ना सि के कमानी है बस है ना सि के अंदर हूं निजात जाके पाप हूं ना मारे तरह की पूर्ण ब्रह्म का सब छोटा के अपना मान मुनि है ते जो किन सोत रहे राज जी को जाए प्रेम के मोहन को मन राज जी अंदर के जानी है को मन राज जी अंदर के जानी है तेज हम को तार है राज जी को सार है जो सुदता को कर है जैसे दरबार के सार सब का मन रख के जैसे दरबार के तार के जाना है मन के तार के बात है के बोल सब दाब रहे हैं के पान है के पथों को स्वरूप है के रूपन को रूप है के रूप रूप रूप है तुम मत को प्राण है दिन को बोल सब का गुण मन को गाड़ी है साधन पर बैठे के गुण को पास है को अच्छा के गुण को पार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत सिद्ध को स्वरूप भूत है के आज बात बिना के लोग को हम को बन के दाए के खूब को ध्यान दाए गनी बन दाए के दाए के बेद को प्रकाश में है दिन दाए के दयाल हम प्रकाल है के सत्र के साथ है के मित्र को बन के दाए के बन के दाए के भाग के हैं जो को को जंग रहे के दाए के बन के दाए के मुंह को मंत्र है के पूर्ण प्रकाश में है को मंत्र है के पूर्ण प्रकाश में है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्ध को वास है के बुद्ध हम को हर है के देव पास को देव है के निरंजन है के देव ने को देव है के संत को सार है के मन को देव है के रूप को सार है जान को बचैया है मान को देवैया है जान जब को बढ़ैना है को हम निया को बढ़ना है तेज को बढ़ना है को को मन दे है मन जन को मन है के निस्त्र है ना रहे मन को मन है के सो को मन है के पता को हरण है के सो को बढ़ना है के तेज को बढ़ना है सब भाई ने बार बार बार हम को बार जन को बीच बार बार बार चार बार ने बार सुनी है विचार को विचार को ना हम लग रहा है बसी हल बिना बल पूर बिन का बार बार से हल दे या ना सुन रहे देव मन को देव मन देव को हंस देव देव मन को देव मन ना दर्द रहे बना सी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है जिसे विहीन है निरंजन जन्म जाल से देव बन के देव महादेव बन के देव बन के देव के वन के देव मोह के देव महाकाल के देव बदरिया है मोह राजन के राजा के साथ जो उनके साथ जामा जन जो गुण जो गुण है धर या धर्म महाल जो को काम जो के कर रहे हैं तो बुद्ध तार को देव कहा है संकट तार के साथ पुण्य का ताल है दुचाल के ताल है दुचाल के खीर कैसे चीरा वद छाज कैसे चित्रा के रखे बाकर रखे जहां बोतार हरे ने पूर के हर से से बाकर रखे के रसिल हो सेना बाद में कैसे पावन के रसिल हो सेना बाद के सितार जब ने तब से रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रो बाके से राम बाबू रसूल सुखंदा बाद ने के रमे को रूल के चंद्रों से बाद ने कोट चांद मिल के चांद बड़ की रित हर अंदर ही माल तो से रूल के हरे रति फट दी के लाल का पाऊ गढ़ कहां से बाबू रसी से सुखंदा बाद ने के सो हुए चहरा है मां से हिमालय के सहारा रसी हरा फरासी फिरंगी फरासी से कदर फरमास के हाय के परंदी तेरे की बंगलाई जाता है के बकरी के डरी गोरा की जरी गंदा जचारी पौंद के आवारी तेरे नाम दे चले तो है के राम दे तेरे नाम पूरा बताओ का रूप का मौर बठवार का मार से जो हम जहां जाई रहा है वो दिन प्रताप जन धर्म के दया दा पूर्ण तक की रवि जन रानी को ने पा रे पाई रब्द है।

अंबर जमीन जय अंबर जमीन जय साधु आकाश साधु साधु साधु पितृवत जय पितृवत

हिने माने दे मान सत नितले दे ताल नी उठे जी उतनी आसरा दे आसरे गुरु जी अपनी बाजी आप जी दाजरु जी कीर्तन कर दिया हूं यहां सब बेटा जरु जी सुदर सच्चे पाशा जी महाराज जिना जिना भाई पाउलो सब बेटा जरु जी सुदर सच्चे पाशा जी महाराज जो सबना दिल के लाउनी चढ़दी कला बख्शनी गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबता सुको सुद प्यारियो जन्म मर कीते

कलम न होई, तुकता कलम नाही जापरी ना होई, बलहार इकतर तुसिया तेरा अंतम जल क्या रहा, जात में है जोत जोत में है जाता कलकला भरपूर रहे आ, सच्चा सब सुखस्वादो जिंदगी सो पार पया, नानक ते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहे आ, सो तेरे राग असा

गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए दृग जीव दृग जीवास जिन हर जिन सतगुर

होए चित की इच्छा, ताउ चरनन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब है तुम घावो, आप हाथ दय मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब है कर तारा, मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब रन को आज संगरिए, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारी तारियह, चुन चुन सत्र हमारे मारियह, आप हाथ दय मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास नवरिय, ओ जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस दुज ज्यों करियो रच्छा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सुहाए प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रगासा, सकल काल का किया तमासा, जम काल जो

जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तुस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, शिव कण को शिव गुण सुख दियो, सतरण को पल मोह बद कियो, घड़ घड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चींटी ते कुंचर यस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घड़ घड़ के पट पट की जाने, जावद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हों कब हूँ, तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते

भिन्न भिन्न तुहित इति तुमरा लखा न जाए पसारा के पिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्भुज खान बहर रच दीनी काऊ फूल राजा है बैठा काऊ समट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे असुधजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जमन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताकि काल निकट नह रक्षा हुए ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक महर हो रित सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छा छ

मैं दास तिहारा, जान आप ना मुझे नवाज, आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा, दास जान कर कृपा करो, मुहार परा मैं आन द्वार तोहे, अपना जान करो पित पारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा।

सिर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याय है संत। अंत लेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। तिन बिधियन की कुल विखै प्रगटे नानक राय। सब सिखण

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई बाकत नेत। स्वर्ग बा स्वर्ग बर करा सगरी पुरी समेत चौपई। जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे। विष्णु भगत

मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु वेटो जिस दियां एह वडियाइया कह नानक सुनहो संतो शब्द धरो पे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तत घर सभागे घर सभागे।

नान जंतु पाए के समाले समना जिन करते एक ना के अचिंता वे करनेता सो करता चिंता करे जिन पाया जग ते सुजोहारे स्वस्थ ते सतिद बाणिया भग

0: लव पात राजा मता प्रभास राजा प्रभास दा नेम सब पुछया बह बेकर विचार पुछया बह बेकर विचार दे रहा ज्ञान ने भय प्रेम दे रहा ज्ञान ने भय प्रेम दे रहा ज्ञान ने भय प्रेम दे रहा
1: ਸਾਲ ਮਾਰੀਆ ਆਪਣੇ

0: तगना तुट सूत महला पहला
1: तगना इंद्र तगना नारी भलके तुमने दाड़ी तगना पैरी तगना हाथी तगना देवा तगना की वितगा आपे वते वृद्धा के आवरा गता लय।